0: चिकित्सा एवं मनोरोगको उपचार तथा परामर्श जनरल सर्जन डाक्टर गोवर्धन नेपालद्वारा दूरबीन विधिबाट अपरेशन सेवा
1: र वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा दैनिक भिडियो एक्सरे सेवा।
2: विस्तृत जानकारीको लागि चिनारी हस्पिटल प्रारी गलाइन तुलसीपुर दाङ फोन नम्बर 082-525-601 मोबाइल 97-487-07-11 र 98-10-87-31-80।
3: स्वस्थ जीवन हाम्रो कामना सर्वसुलभ विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा हाम्रो चाहना।

सवरी किनु सर भगवान राम ताही देही मति राम उधारा सवरी आश्रमा प्रभु प्रभु विधारा। भगवान को चरण सवरी को आश्रम रह सवरी ले देखे की थी न भाई भौतिक रूप लाई सवरी ले देखे की थी न तर कसरे चिनिन की मेरो प्रभु तब ताई दे मति राम उधारा सवरी आश्रम प्रभु विधारा। सवरी देखी राम गृह आये मुनि के वचन समझे संत हरले तो दिए को आशीर्वाद संत हरले तो दिए को प्रेरणा तो भगवान को नाम को द्वारा सवरी को कुटी में भगवान पुगेरा सवरी लाई दर्शन दिनी भयो। सरसज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट और शिरोवन माला भगवान राम ने जटा थियो त्यहाँ अति सुंदर फूल को माला हरू शोभित थियो। सवरी ले चिनिन मेरो प्रभु आउनु भयो अति सुंदर पवित्र पानी ल्याएर चरण धुन्छी। आज हामीलाई नमस्कार गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ लाज लाग्छ तर भगवान राम को चरण धुन्छी। सागर जलै चरण पखारी सागर पवित्र जल ल्याएर चरण धुन्छी अति सुंदर कुशासन दिन्छिन। अब के दिऊ घर में आए को प्रभु लाई भगवान लाई कसरी खाली पठाऊ बिचिरे गरी तैले देखी उनले बहर राखे की थीं ते बहर भगवान लाई भोग लगाउँछिन। भगवान राम ले तो भोग बहर को खानुहुन्छ अति सुंदर अति मीठो सवरी एति मीठो तिमीले फल कहाँबाट ल्यायो काई बाग बगैचा छ भनेर भगवान राम ले सोध्नुहुन्छ। अति सुंदर मीठो फल दिन्छिन बैर तर त्यो बैर कहिले देखि सुके रहनुहोस् भाव थियो त्यो बैरमा भावना थियो समर्पण थियो। समर्पण भाव हुन्छ भने तितोलाई पनि मिठोमा परिणत गर्छ। त्यसैले भगवानले बैर खाएर भिलिनीको उद्धार गर्दिनु भिलिनी कहे भन्छिन् हे प्रभु म त अधम छु।